शांत मेर शरीर का एक रतिक दुआ दुख दुख फेर बनाई गए ज्ञानी बुद्धि दा सतगुरु दिखो का धर्म के दुआ उसके तेरा जति का जोर के दुआ द्वापर तपे का सत के दुआ कल जुगत का मूल के दुआ शाम के सुंदर स्वामी सतना शाच रे।

श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े बनाने विस्माद।

सब तो वड्डा मंगता। परमात्मा दे खजाने कदे खत्म नहीं हुंदे और इस मनुख दे कदे भरदे नहीं है, कदी नहीं भरदे, खत्म ही रहंदे ने, घाटे वाल नूं जांदे ने। भावें लख यतन करे के कारू मांगू माया दे गंढ जोड़ लवे, लेकिन फिर भी कमी रहती है। एक सियाणा बंदा कहंदा हो इंसान गंजे कारू जमा कर दी बाज ते, घर शबी सुल्तान आली बाज ते, घर तू मैदानी के आखिर मुर्द ने अस्त, ताकि आमत जिंदगानी बाज ते ता की होया। तो भाव है कि इस दे खजाने कदी भरते नहीं और परमात्मा दे कदी खत्म नहीं हुंदे। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी कहंदे ने परमात्मा दे खजाने जिहड़े ना अभंगा बेबूते। तो इस इंसान नूं पुत्र चाहिदे ने, धीआं चाहीदियां ने, ए माण मंगदा है, ए तान मंगदा है, ए शक्ति मंगदा है, कुवत कूत मंगदा है, इस नूं सब पदार्थ दुनिया दे चाहिदे ने। लेकिन सतगुरु कहंदे ने ए कोई बहुत उच्चे पाए दी मंग नहीं है, बहुत वधिया मंग नहीं है। परमात्मा बहुत वड्डा दाता है और वाहल शख्सियत है, वो वड्डा दाता है और उस नूं तिल जिन्नी भी तमा नहीं है। पदार्थ दिंदिया वो कदी थकदा नहीं, वड्डा दाता तिल ना तमाए। लेकिन इस इंसान दी तमा तृष्णा खत्म नहीं हुंदी, वो ते वाहल शख्सियत है, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। इसलिए सतगुरु एक होर जगह वचन करते हैं, ददा दाता एक है सब को देवन हार, दिन दे तोट ना आवे अगणित भरे भंडार। तो परमात्मा दिया अनेक खूबियां विचों एक बहुत ही वड्डी खूबी यह है कि वो इस मंगते इंसान दे ऐब देखता है, औकड़ देखता है, लेकिन दस्तूर इस नूं दे ही जांदा है, सदियां तो दिंदा है, जुगा जुगा

मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

कर्मी सहज न उपजे सहज सहसा न जाए। कर्मी सहज न उपजे बिन सहज सहसा न जाए। न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाल। सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए। कित संजम तोता जाए मन तो शब्द लागो हसो रहो चितला। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाई

रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी, पर जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली। राजा उठिया महल दे अंदर राणी नू लभण लग गए। सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना आवी, मन विच वरत गई है। तो प्यारी सास संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउन लगे, मंदे भी आउन लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है, पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना ए तां मैनूं धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया, नींद आ गई। दिन चढ़िया, जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दित्ती, राणीए उठ। राणी उठी, राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल किया राणी ते, के राणी सच दस तू राती किथे गई से। अधी रात तू गैर हाजिर सी, किथे गई सी। राणी सोचन लगी, जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां, हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी। आई साहब जी लिखदे, साध संगत मिल गाम दे, कराती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी, महापुरुषां दी संगत रात नूं जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी, चाहे मीह होवे चाहे हनेरी, कैसा भी वैदर क्यों ना होवे, राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी है तां हो सकदा है राजा सत्संग तों रोक देवे, पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग। मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी वाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले, पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। ये प्यार दी निशानी है, ये प्यार है। राणी सोच, राजे ने फिर किया, राणी बोल तू राते किथे गई सी। जे झूठ बोलदी हां तां पति परमेश्वर है, इस्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है। जे सच बोलदी हां तां सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग है। जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती, सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

अनंत सावधा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत सावधा पाठ सारे मिलके करिए अन गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शिया खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेट गाउण अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग की दात बख्शो।

होए के पलीराज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले कहूं फूल होए के भली राज पूले कहूं भवर होए के भली पात कहूं अश्व होए के

सदैया बिंद के सदैया ताहे हीज के बडाया मंदिर सदीव नंग पाए ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण ज्ञान के बहीन छिन

बिन बाजे कैसो नटकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ मन

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का जर्म